यह आकाशवाणी आइजोल है और आप सब सुन रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्यारे श्रोताओ, मैं हूँ आपकी आरजे नुबई। और जी हाँ, आज के दिन मैं फिर से आप लोगों के साथ बिताने के लिए यहाँ बैठी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा साथ पसंद आएंगे। इस खंड में मैं आप लोगों को हिंदी का बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाने जा रही हूँ। तो हम शुरुआत करेंगे शान के आवाज में, और गीत की बोल है वो पहली बार। तो आइए आज का दिन हम शुरू करेंगे बहुत ही खूबसूरत गीत से, और सुनते हैं शान के आवाज में वो पहली बार।

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था शान के मधुर आवाज में, और गीत की बोल है वो पहली बार। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की, और हमारा अगला गीत होगा अलीशा चेन्नई की आवाज में, और गीत की बोल है तू ही मेरी जिंदगी। तो आइए सुनते हैं तू ही मेरी जिंदगी।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था अलीशा चन्नोई के आवाज में। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की और एलजेड साई लाओ हियानिन नुबो हिंदी लाही चू कमेंट दान वक कशे लाओ नंग माले यो कलाओ स्टार में यंगे रंती है कमेंट वक ngai na po awang ani tero comment vak ngai na wa na fang khan min lo ngai thak lo tur ti na ni lo wa min lo ngai thachar char do ne a ngak te pa bil kho thler hian ar jenu boi namaste pal pal song hari song kha ngai kha ila ming moi te avi kung te ramatui real itan ka hla ne from ngak te pa bil kho thler pal pal song hari song kan lau tum don ne a chanin meng moi te hian nu boi namaste duty nu am le arantia aapko bhi meri aur se ke ngai te hian namaste arje nu boi sabhi logon ko iti chuanin unka par pari pu the usko va ke valate jiski mamuni रमलोते इसोइना अन्नी वेथौती नामी इप्लेले तुर खा उनकी पीसी जेसिका इतान कलाने त्यावहन शचियंग थिन तक एम चानिन मामुनि रमलोते नारजे नुमो नुआम दोने रोहन सुर चेर बोक्से नल तोक तोक हन प्लेला नुआम दोन लुतु करंति ए कन ला होत छौ दोन चौ तुना चानिन ए कला होत लुतुक मन लवा का होत मन हुना चंग कन होतंग औ कन छेंग्स दोन। तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, आप सभी लोगों को आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर और हमारा अगला गीत होगा शान के आवाज में तन्हा दिल। तो आइए सुनते हैं तन्हा दिल।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, अब हम आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की ओर। मामूली रमलो हथियार आज नुबरुआ सुर से कतिया नि सदा या पुआन हन पौधो नीला आसू रंग ती लाओ बुक से तुना हियां कनुन ही लकलो तब के चुका फाओ मार्क्स का छुआ करन छुआ मा हान मो आसूर चुआन लौ सें मई रो ती वे रो ती चुवा चुती नि लौ चुन थोम नोय उई मुन मई मो नि मुलाउ रि मनम थेना हवांग हान इन ती ngai kla tera te chuan in good boy hian in arje nu boy lal ngai om i lo du ti le ta nal te ai ka ka lo ngai man lu tuk che o ka lo om pui che o lal nu boy a ron te oi voi thum ni ko man arje nu boy lal ngai om lal nu boy a SMS pa kada voi thum mi ko man lal ngai om ngai om pa min lo di ti pui char char ro vein chu tu na chang kala hot book lo na kina an hot don nya kati ha ab hum aage barhenge hamare agle geet ki aur hamara agla geet hoga main hu tumhari to aaye sunte hain main hu tumhari Alisha Chennoi ki aawaz

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था खामोशिया फिल्म से बातें ये कभी ना। अब समय आ गया है इस खंड का आखिरी गीत सुनने का। मासे चु मिमा जन पार पारी पुही कंछियार ले लो कंगार जे नु बोय कलौ लंग मन वे चे अव इन चु कलौ लंग थमन दोन लौ मिथि कन नै तता आ इज आई तिर ले तुर खा कपुके ngai te a meng moi te a ngak te pa bil ko thlir लल्दिन पुया फल कौन तेलाउ ngai थाक ता नंग मा माई लविन नरन थिनि पार पारी पु गन वहन लो मेम मासे वो इन चु चु इ बॉय डोन रियनी मेला आ मिथि इन कल तुई ते कन ति मै नियांग चु तिरो मसे इ होवे ला मिलो ngai थले दोनिया। ओ तो आइए सुनते हैं इस खंड का हमारा आखिरी गीत। और इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा तुम ही हो। इसी गीत के साथ हम इस खंड के लिए आप सभी लोगों से विदा लेते हैं।

दूसरा खंड है और इस खंड में हम सुनेंगे हिंदी का फिल्मों का अलग अलग फिल्मों का गीत। तो हम शुरुआत करेंगे कुछ कुछ होता है ठगिनो, कुछ कुछ होता है घंटी बम रुआते असुर दे उचेर चेरिन कन श्या चु वंच कुछ कुछ होता है पतंग हुआ। तो आइए सुनते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म का टाइटल सॉन्ग कुछ कुछ होता है।

तो जी हाँ, मैं प्यार रिश्ता था, ये था दिल का रिश्ता, एलजेड साई लविना अंगाई थाक चाक एम एम खाने बॉस कलोम लो तो कंगाई थाक चाक ई लो प्ले या अरंती या के नि पो कन लोम लो तो के तिचुआन इन अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। और हमारा दूसरा गीत होगा अकुल देव गंगाई था तुम सब कुल लव देव गंगाई था ओ क्या बोलती तू कंती अंगले। तो आइए सुनते हैं गुलाम फिल्म से क्या बोलती तू।

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था आशिकी 2 फिल्म से, और अंकित तिवारी के आवाज में गीत की बोल सुन रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे श्रोताओं, अब समय आ गया है इस खंड का हमारा आखिरी गीत सुनने का, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे गुड बॉय का संदेश। अजय लोनु भाई हेलाई मी पनी जग छ लोग का सकते उठे न मौका को चर्चा दोन से ककौ फाक ककौ खाते है मई छे ते फाके रोंती तेला मित बॉय मन फे कलाम ककौ खाते है मई छे नु बॉय अरंती ने ए या तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा तेरे रंग बल्ले बल्ले, और इसी गीत के साथ इस खंड के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लूंगी और फिर आप लोगों के पास लौट के आऊंगी 12:40 पे। उस वक्त मैं आप लोगों को इससे भी बेहतर और खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप हमारा इंतजार कीजिएगा, सुनते रहिएगा।

नमस्कार आप सभी लोगों को हिंदी का इस खंड में तीसरा खंड में मैं आपकी आज अनुभव फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और जी हाँ मेरे प्यारे श्रोताओं, इस खंड में हम सुनेंगे अलग अलग फिल्मों का अलग अलग गीत। तो हम शुरुआत करेंगे ग्रेट रॉबरी फिल्म से और गीत की बोल है ओ रवीना। तो आइए सुनते हैं ओ रवीना आप सभी लोगों के लिए।

तो जी हाँ, मैं प्यार शाह, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था वो था ओथम्स के आवाज में, और गीत की बोल है सुकून तिचुआन एलजत साइलाउ हियानिन बॉस नो बॉय का सुकून लेंगे तन सुकून लेंगे ये मो अमोय अनि हे लाही चु अथु क्वालवेल दान ही अति अथु क्वालवेल दान ही मोय तकनी तेरो अल्लाह थु पोठा लंच का ए जाऊ दीम दिया तो nang in ei puar ve to em kanu boy arantia kala in ei puar ve lafa hemi segments o hang in ei puar anga em puar peng pong ha min lo ngai thado ne a ni chan oi lo ei fil ta chan chan arje nu boy an halani kala feel vong vong mai mai phal chi ni lo reng reng ka chau ei lai nen hia kala me atuis atui satang oi ha good boy hian thei hai ron pos oi e cha kom ve arjen arjen u boy in lo vakal har amin to nia alum box si ran ti oi oi oi e vacha kom ve bilo ngak tang tang ro kan ron e don e cha kom le mai to ji ha mer pyar cha ta ab hum phir आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर. आएंगे अगला गीत आगन तियंग ओ त्या हां का बॉय ने चुमा. तो आइए सुनते हैं नवजोत आहूजा के आवाज में, और गीत की बोल है खत. ये गीत जो है ये जो अपने प्रेमिका को खत लिखते हैं उसके बारे में है, और वो इस खत में अपने प्रेमिका के लिए घर बनाने का वादा भी करते हैं. तो ये गीत जो है बहुत ही खूबसूरत है, आशा करती हूँ कि आप सबको भी पसंद आएंगे. तो आइए सुनते हैं नवजोत आहूजा के आवाज में खत.

तो जी हाँ, कैसा लगा आप लोगों को? ये गीत था नवजोत आहूजा के आवाज में, और गीत की बोल है खत, और इल्जित साइलो हियानिन मारियाक्तिन रुनखोहर चांगनी अथेंग ठीन मासे मो कनु बोई बोई नंग नी इन लो ओमा एफ एम जो ओय रुन कन हनबेल chang hian mo ka khohar hi in nem thin ani in felin in mel thalom si voin katlan lo ni tlan lo ni hi chanin in lama han tom chak mai tur tera tun lai phe chu traffic an shang kat tu wang chanin tlan lo ni ha chanin ina han han tom rot phatila chanin adikani me ye. अब हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की, और हमारा अगला गीत है के ते दु एम एम अलुंग लेन नेम तू बेरा खोहर नेम तू बेर नियमो. तो हम सुनने जा रहे हैं के आवाज में, और के आवाज में अलग अलग सा गीत है. तो कल रात हमने सुना था पल, क्यों ना आज हम सुनेंगे यारो. यारो हंगाई थवे थूंगीला तुरानी जाना पल कंगाई था तो थूंगे पल ही हनगा खले फोतिला. तो आइए सुनते हैं प्यार के पल.

तो कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अभी जो हमने गीत सुना था उस गीत की बोल है, हम रहे या ना रहे कल, हाँ पल मोइनी तरह।

An sol fatang a rupu chi pian ajen no boi zai tir le tur kha itan o ran ti a kan van lom em next song kha intan kan ran ti ve bokang ab hamara agla geet jo hum sunne wale hain wo hai saath rahe tu mere aur ye sanam puri aur uski dharam patni ji jiko bini ki aawaz mein hai ye geet bahut hi khoobsurat hai aur is geet ko log bahut pasand kar रहे हैं इसीलिए हम आपके लिए भी प्ले करेंगे तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता चलिए आइए सुनते हैं साथ रहे तू मेरे जुकुबिनी और सनमपुरी की आवाज में आप सभी लोगों के लिए।

जी हाँ मेरे प्यारे श्रोताओं, इस खंड के लिए हमारा आपके साथ ये सफर यही तक खत्म हो जाते हैं। तो हम फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर, और इस खंड के हमारे आखिरी गीत की ओर। इस खंड का हमारा आखिरी गीत होगा बर्फी फिल्म से आशियां, और इसी गीत के साथ मैं इस खंड के लिए आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ।

नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओ, आज का हिंदी का आखिरी खंड में मैं आपके आरजे अनु भैया आप सभी लोगों का यहाँ फिर से स्वागत करती हूँ। और जी हाँ, ये खंड है आज के लिए हमारा आखिरी वाला, तो मैं इस खंड में आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाऊंगी। तो हम शुरुआत करेंगे अलीशा चेन्नई की आवाज में, आई तेरी याद। तो आइए सुनते हैं आई तेरी याद।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोता, ये था अलीशा चेन्नई की आवाज में और गीत की बोल है कैन यू डांस। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की ओर। ऐसे साइलो हियान इन कनु बोई एंटिंग लाइव ले दम कहाँ ले ले ते प्ले ले तुर खा मा मतेक सी तु ना सेवन दे हॉस्पिटल आदिंग मेक तान कथांगे और उनतिया करन लाइफ ले हुन तो रिशिया तो निलव मासे दूध सांसन लाइफ लो शाम का कदू मो खान फिल्म खाने मिम बोल ठीक ने शेम अन सक वेदे ओम जान सोल फतंग अहियान आजे नुबई को वेला कदू बेर को वेल मेल छबेर सियल वो नुई खा अब हो मा वे नुई तीला हाई फिन दालवा अब हो मा वे के इन रिन मा इन हो दया इस आई तीर ले तुर खा अतान का लाने रंतिया एते रेंग मई कन लो एंग लो छुजुई हाल छिम छिम मा मा पो मा तो जाम पकुंग पकुंग ह्यान इन आजे नु गुड आफ्टरनून लो थो ना ट्रंगिंग कलो ngai tha che ni asaturu luttuk dim na tel mi alovin min he min hem ta nge trau vel nge tau vel ni berin ka sha ma se itong ri ka sha min ti har va mai i o hi chu a kan wa han lom thin ta kem kan o che te in alo ti har cheu ha ke ni o ve tak ngel mo han sai po o ri chuak lei thei lo o ina nang nit alo ti lim cheu kha chu kan lom tak zet zet ani e to ji ha me pyare shata ab hum phir aage barhenge hamare agle geet ki aur agla geet jo hai wo hai main aap sabhi logon ke naam karungi aur hamara agla geet hai lal singh amika लाल सिंह चड्डा लाल सिंह चड्डा फिल्म का गीत है और गीत की बोल है तेरे हवाले तेरे हवाले ही अल्लाह थू अठा इन मंगाई न थू अनिया रिन ओम न थू ते अनिया रिन ओम न लम पंकन सैलाई में कनी वाहे कन गाय छांग तो आइए सुनते हैं तेरे हवाले लाल सिंह चड्डा।

तो जी हाँ मेरे प्यारे श्रोताओं, कैसा लगा आप लोगों को ये गीत? अब समय आ गया है इस खंड का आखिरी गीत सुनने का, और इस खंड का हमारा आखिरी गीत होंगे अलीशा चेन्नई और संदीप के आवाज में धुआं धुआं। और जी हाँ, ये गीत जो है, इस गीत को सुनने से पहले हम आगे बढ़ेंगे आपके संदेशों की ओर। और मुझे यहाँ मिला है गुड बॉय की ओर से सो फथंग और पूछे भाई इन्नो खा ओमनिया है अहो तो मगन थे लो लो हो लो वा चंकन बियक नाल बोक से ओ आम आपन मो मिन लो बियक चानिंग गुड बॉय ही आज नु भाई नु भाई आ का कौले खा तो ओम चेसिया तेल को खा दो लो नक्तु का मिल कौ दोन इलाउ दिउ ति ले मा तान कौ चर चर से ngai lom lal nu boy min ho san mai to ka ngai le don si che a che nu bai eng ti nghe ilaul lan le don tomorrow a min ho san nei tum nai mi ya tia ka ngo a ka ngai lok che ti ke pong ka ngai lok rap slacks che a chan in nak tu ka kan in tong le don lam nak tu kha chan ron lang sek ro ka segment a phe kha chan mo la pak khat zo a han ron lang se lang cheu a te chan in durgesh naganpure ne yahan bheja hai wo likhta hai good morning arjun namaskar have a nice day bol rahe hai aapka bahut bahut shukriya aapko bhi meri aur se have a nice day Hitendra Das ji kehte hai very very nice program good afternoon very hot arantia aaj yahan bahut garmi honge udhar bhi aur yahan bhi thoda thoda aapke assam ki tarah nahi lekin thoda garam hai idhar bhi to ji hum mere pyare shrota samay aa gaya hai is khand ka aakhri geet sunne ka is khand ka hamara aakhri geet honge dhua dhua isi geet ke sath main aap sabhi logon se vida leti hu apna khayal rakhiyega

0: Hei hi Akashvani Aizawl FM zoi zapuin pasari changa puan chua ani voin June ni ni sanghi somni paruk thole ni ta na kan hun voi khatna kan zo tereng mai min ngai thatu te zong zong chunga lom thu kan suya kan hun voi ni nahi tlai dali le chan via kan chan le do na min lo ngai thale cheu turin kan so ma chu hun man pui tu cheu hi lerwat feli RG of felikani a control room engineer duty hi H lanun puya ani in zawain ni man nuam vek ule
1: आत्मनिर्भर जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं और उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा।

हेलो नमस्कार आदाब आभार, आप सभी का स्वागत करती है FM 107.7 पर। मैं हूँ आपकी आरजे मोहिती और इस मंगलवार की बहुत ही सुंदर सुनहरी शाम में आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। दोस्तों, इस खंड में लाई हूँ आपके सामने तीन फिल्मों के गीत। पहला गीत आप सुन रहे हैं लुका छुपी फिल्म का गीत है, सॉरी ये है दरमियान जोड़ी ब्रेकर फिल्म का। और अगली बार सुनाऊंगी मैं, तीन फिल्मों के गीत सुनाऊंगी मैं, जिस तरह से आपका हाथ आपको बताया है, जोड़ी ब्रेकर, लुका छुपी और जिंदगी 50-50 फिल्मों के गीत। तो चलिए इस बहुत ही सुंदर सुनहरी शाम का आनंद उठाते हैं। शुरुआत करते हैं हिंदी की इस बहुत बहुत ही सुंदर जोड़ी ब्रेकर फिल्म के गीत दरमियान के साथ।

बेनाम रिश्ता जो कर गया। ये थी दोस्तों शफकत अमानत अली और क्लिंटन के सिराजों की आवाजों में दरमियान, और फिल्म का नाम था जोड़ी ब्रेकर। ये जोड़ी ब्रेकर कैसे काम करते हैं तिरु जोड़ी ब्रेकर तीचू इनगा जोंग ते तिछेन तू पद्दर तू तीना खानी भैया। इंटरेस्टिंग है नितरो, फिल्म भी मुझे लगता है बहुत ही कॉमेडी भरा होगा ये फिल्म। कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। बढ़ते हमारे अगले गीत की ओर, जो कि है लुका छुपी। फिल्म का गीत सुनाऊंगी मैं आपको, पोस्टर लगवा दो।

ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। लगता है कोई किसी के गायब होने की खबर है। पोस्टर लगवा दो बाजार में, पोस्टर मिबो जो न तो नहीं हो तक नहीं तो मैं से आ दू जो तक खा मंगाई जो तक मंगाई तक खा तिल है मंगाई हंती तो ना अलोंग ना ते मैम अमेल दू जो खा जो नान खा नि पोस्टर खा बाजार आ ते पो खान हंतार में ये खपोई तिलो ना खा नहीं ता नहीं चु। तो चलिए दोस्तों, ये थी लुका छुपी फिल्म का गीत, पोस्टर लगवा दो। बढ़ते अगले गीत की और, तो से ना रेखा भारद्वाज के, रेखा भारद्वाज की बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में, और फिल्म है जिंदगी 50-50।

तो संदेश आया यहाँ पे मिंगमोइते का लिखते हैं हमें या मोइते नमस्ते ड्यूटी नो हमले नमस्ते मिंगमोइते या जानी चुकन चेंग स्लेंग चुतरो अमुन अंगे दम चौजेल दोनिया ओ चुआनीन आज रात 8:30 बजे मत भूलिएगा हमारा फेसबुक में लाइव होगा लाइव प्रोग्राम। चलिए हम बढ़ते हमारे अगले गीत की ओर जो कि है

बेनी दयाल और सलीम मर्चेंट शिल्पा राव की आवाजों में जब तुम्हें। और यह फिल्म दोस्तों जोड़ी ब्रेकर का जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ।

तो ये थी दोस्तों, खास करके मैं इसकी कॉर्पिट करना चाहूंगी कोका कोला के दीवानों के नाम। कोका कोला ना इन तू हो का इन तान हे लाही करन करन दे के तनी छो अंगै नम दंग दाई बे तेरो। चलिए दोस्तों, हमारे पास वक्त बहुत बहुत बहुत ही कम है और ज्यादा से ज्यादा गीत सुनाना चाहती थी, लेकिन और ज्यादा गीत तो मैं सुना नहीं पाऊंगी। इस जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सुना रही हूँ, जिंदगी 50-50 फिल्म का गीत है। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग बप्पी लहरी और अंतरा मित्रा की आवाजों में।

नमस्कार, स्वागत करती हूँ FM 107.7 पर। आरजे मोइती आपके साथ है अपनी दूसरी खंड में, और मैं इसमें खंड इस खंड में आपको सुनाने वाली हूँ एकल गीत, और जो कि बहुत ही मशहूर गायक है उनके द्वारा गाए गए कुछ फिल्मों के गीत। तो दोस्तों, पहला पहले मैं उन गायकों के नाम बता दूँ आपको, कि जे येसुदास, नदीम एन श्रवण और अजीज शदन। तो इनके द्वारा गाए गए कुछ गीत सुनाऊंगी आपको फिल्मों के। पहला गीत जो मैं आपको सुनाने जा

तो गीत सुन रहे हैं आप अजी शदन खवाल के आवाज में, आका में जाऊं कहां। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते अगले गीत की ओर। के जे यशुदास के आवाज में है ये, आज से पहले आज से ज्यादा, फिल्म है चिच्चौर का।

तो दोस्तों, अपने संदेश के द्वारा हमें बताइए कि आपको कैसा लगा के जय यशुदास किया का आवाज। आज से पहले, आज से ज्यादा चिचौर फिल्म का गीत है। हम बढ़ते अगले गीत की ओर। साथ में जल दिनपो यफल कौन का संदेश आया है, उन्होंने हमें ये लिखा है। अर्जी प्ले ले तुर्खा नंगमाता लिलोंगाई थवे जोंग जोंग ता ने कछियां ते दोर पुया मीते दा लो ना मीते ता नरंती नी दिन पुया फल कौन बेंग लाई अर्जे जोंग जोंग ता नरंती बोकनी। बहुत बहुत शुक्रिया दिन पुया, इस गीत को भी हम आपके नाम करते हैं। चले, ये जो गीत आप सुन रहे हैं विनोद राठौर सोनू निगम के आवाजों में है। आईना बता कैसे मोहब्बत फिल्म का गीत है ये।

बेखुदी फिल्म का गीत है आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में आवाजों में देख के ये रुमाल मुझे याद रखना हे रोमल ही मोपिया इन मिन लौरे छक थिन दोनिया तिनी बिसो अहियान इन एक मिथ है हमारा कि कहते हैं कि रुमाल और टॉल जैसा चीज एक दूसरे को नहीं देना चाहिए क्योंकि वो लोग बिछड़ जाते हैं तेरो हे रोमल ए मो तो वे दे मुख त्यांग पहुंचे इन इन प्रेजेंट इन लौ तो जो तो इन टेन थ्री नंतरो अमोनी ले हे रोमल मोपिया यानी मिन लौरे छक

जब तक गीत सुनते आपके एक संदेश पढ़ लेती हूँ। जिलजामा ओ ए ए ए ए ए कछियार लाई खाई लो गाई थलो निम्मो कछियार चियांग लो तुक ओ कछियार निया मैं लो रहे नहीं। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं इस वक्त एफएम द वॉइस ऑफ द साउंड ऑफ साथ, हर जगह मैं आपके साथ अपनी दूसरी खंड में और इस खंड के आखिरी गीत की सुन रहे हैं आप। हम और हमारी आपकी फिर से बातें होगी 8:30 बजे, जिसमें मैं एफपी में लाइव होने वाली हूँ। रेतलेचन वे आखान इन एफ पी अकन रोन लाइव तो ना खा मिन लो ngai chang thak tum lo thir tuin kan nun so ma che wa to da sab se thodi der baad aap to aap sunenge samachar jo ki hoga seedha prasarit primary channel se dar rukne san ve yani primary channel tang lak son news tan chin thar kan ngai thadoni।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर and farmer-centric policies. Participants are Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.
2: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every state.

0: of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashwani series on completion of 12 years of NDA government.
1: Namaskar, thank you.
0: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, न सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
2: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर, कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों, कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी और या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हॉर्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हॉर्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के, चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं, और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खोल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया। उसमें जब पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहां बेचेगा वो, एक बड़ी समस्या का
1: पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है, तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया। और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े न हो। जी
0: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइन सो ब्यूटिफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इवन इन द डिफिकल्ट इयर्स ऑफ कोविड द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर एरियाज वेयर द गवर्नमेंट यू feel has you know hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
3: For over a decade, you know, Government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision of a plan, right, of Viksit Bharat.
0: Yes.
3: So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it, and that is why over the last 10 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects. They are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part, and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
0: Yes.
3: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is, if India's economy is going to reach the third largest economy,
0: yes,
3: that India should be annadata for the entire world.
0: Yes.
3: See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld. उनको मदद किया गया है, उनको हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए जो भी साधन की जरूरत है वो सारी चीजें भी देते हुए भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज बिहाइंड इट। सो इन दिस ड्रीम, यू नो, टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इन अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग लाइक क्लाइमेट चेंज, then
0: yes,
3: ensuring market access, the challenges in market access, the setting up of warehouses, setting up of cold storages, and also running green trains.
0: Yes.
3: You know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so
0: yes,
3: that our farmers get a better price, has been is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support.
0: Right.
3: For instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere or other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know,
0: yes,
3: that is also the big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana,
0: yes,
3: so that, you know, it focuses on low productivity districts.
0: Yes.
3: Focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta,
0: yes,
3: in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal vagara vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming.
0: Right.
3: So that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture. And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
0: Yes. Mr. Singh, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की, अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें, तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सकें।
2: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है, तभी फायदा होगा जब इनपुट कास्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर ये और पैसा। तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है, जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
0: 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ
2: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए। दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहां से खाद की उपलब्धता कहां से आ गई, ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है। लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है। जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी, यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया, और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी। कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं, ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है,
0: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता है,
2: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन में। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता, किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को, उसका फायदा मिला। तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे
1: इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
0: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य
1: कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है तो किसान 27 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर
0: बिल्कुल सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रेटेजी and have been successful?
3: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. Right. And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that he revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan Committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsap was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. Okay. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore, particularly to take into account this particular problem. Yes. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
0: Yes.
3: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
0: Yes.
3: Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production there is, like for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
0: Yes. Coming to you, Mr. Singh, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है, और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है?
2: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। ये सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय। जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या सुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं। 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट। आप समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पर मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है, और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25-28 हजार रुपया, या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए, एक साल में, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़। और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25-30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
0: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
2: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है। आपने जो कहा ना कि सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और, जितने भी दूसरे एलाइट सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
0: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द PM किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 लाख फार्मर्स हैव एनरोल्ड। एंड ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड एनलाइटनिंग स्टेटिस्टिक इज दैट 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
3: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final product. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is, for every drop that is being, you know, water that is, that the productivity must go up. which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem that is also being tackled in a different way, particularly

0: the climatic conditions as well as the land condition. Hmm. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. Yes. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. Yes. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention.
1: Yes.
0: Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. Hmm. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticide, the spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. Hmm. You know, we had a vast acreage under crop. What is the condition of the crop? Hmm. So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishw hai, usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hain. 2014 se dekhe to 37% bade hain hamare agriculture exports. $51 billion ho gaye hain. Aur isme jo processed food exports hai, unka share bhi badhkar 20% ko paar kar gaya hai. So ek shift hai towards higher value added. So ek progressive shift dikhai de raha hai food processing ki taraf. Food processing par bahut sarkar ne jo bal diya hai, PLI bhi aaya hai food processing industry ke liye. Iske bare mein aap hama thodi bata sakte hain jo value added aur food processing hai, is par bal diya jana kyun itna important hai?
2: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रा फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है, अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी, और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के तौर से, टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूसर्स, जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक. और जो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशन को मंजूरी मिली है. और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशन के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है. सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
2: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी, कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा. और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो ये जितना आपने बताया, मत्स्य संपदा हो, चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, सब उसका पार्ट हैं. और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा. जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है. और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशनड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड आवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट। प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, कोको, कैश्यू, सैंडलवुड इन कोस्टल रीजन एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आलमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज, दीज हैव बीन डिफाइंड एज द फोकस एरियाज। सो यू थिंक यू नो दिस काइंड ऑफ वेरी फोकस्ड अप्रोच दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग लुकिंग एट द वेरी वास्ट एंड वेरी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड यूजिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी?
0: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes. You talked of the need for going for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export oriented in our production. That is very, very important, because we have a rich agroclimatic zones. That is why, you know, Prime Ministers particularly mentioned, you know, you mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses and the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you
2: very much.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट Empowering farmers through welfare and farmer-centric policies. The participants were Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

आराधा राभा आप सभी का स्वागत करती हूँ एफएम जोवोई 100.7 पर। मैं हूँ आपकी आरजे अमोइते। और दोस्तों, इस वक्त हम लाइव में हैं एफबी पर। अगर आप हमें देखना चाहो तो जरूर एफबी में आइएगा। लाइव ऑल इंडिया रेडियो आइजोल पेज को लाइक कीजिए और उसमें जितने भी लाइव प्रोग्राम होंगे वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको जानना है कि आपकी आरजे अमोइते कौन है, देखना है आपको अगर, तो जरूर आकर लाइव कीजिए एफबी में। और तो ना एफबी आहन कन लाइव में का चौनिन इन लोगे आरजे अमोइते ही तुंगे ले तिया कंसे दो नीचन एफबी आखानिन ऑल इंडिया रेडियो आइजोल का पेज का लो लाइक उला चुमी छुंगा चुआनिन कन लाइव प्रोग्राम ते कन क्लियर थे दोन नी। तो दोस्तों, ये जो खंड है हमारा, ये हमारे आरजे की चॉइस का खंड है और इसमें मैं आपको सुनाने वाली हूँ अपने पसंद के गीत। तो सबसे पहला गीत मैं आपको सुना रही हूँ मेरा बहुत बहुत ही फेव गीत, जो कि मुझे पहले से ही पसंद है। और गीत का नाम है जरा सा और फिल्म है जन्नत।

तो ये थी दोस्तों जन्नत फिल्म का गीत जरा सा। हमको उम्मीद है आपको भी जरूर जरूर पसंद आया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले चॉइस की ओर। अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरा बहुत बहुत ही फेव गीत है और पाठशाला फिल्म का गीत है। ये बहुत ही बढ़िया और सुंदर गीत है और मुझे उम्मीद है आपको भी जरूर जरूर पसंद आएगा। तो चलिए मैं दोस्तों सुना रही हूँ आपको एक खुदा, पाठशाला फिल्म का गीत है ये। आप सभी सभी के नाम जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, गुड बॉय ने हमारी तस्वीर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया गुड बॉय। मैसेज कलोम और व्हाट्सअप आखानी कलोम लुटुके।

तो दोस्तों, ये जो गीत आप सुन रहे थे, ए खुदा पाठशाला फिल्म का गीत था। हमको उम्मीद है आपको भी जरूर पसंद आया होगा। चलिए, इस वक्त हम FB में लाइव है। अगर आपके पास वक्त हो तो जरूर आइएगा FB में और फेसबुक अखन कन लाइव में कतून आहियानिन ऑल इंडिया रेडियो आइजोल का पेज खलो लाइक वे उला ताचुआनिन लाइव प्रोग्राम देखा नोटिफिकेशन इन दोंगा दिखानिन लाइव प्रोग्राम मोम प्यांग खानिन इन रन लूट थे दोन अनि चुआनिन। अगला गीत जो मैं आपको पेश करने जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है आपको भी ये जरूर जरूर पसंद आएगा। फिल्म का नाम है रेस और इसमें अक्षय खन्ना है, बिपाशा बासु और सैफ अली खान भी है। पहली नजर में कैसे जादू कर दिया। अमोय तो फेला ही मो चुआनिन तमान टंग मान मान टंग मोय कती तो निया। और हाँ, आपके संदेश भी आने लगे हैं हमारे फी में, तो जरूर जरूर पढ़ेंगे। इस गीत को सुने जरा आप। एक पहली नजर में कैसे जादू कर दिया।

0: Ladies and gentlemen, designer of this evening, Mr. Amano.
1: Baby, I love you. Baby, I love you. Baby, I love you so much.
2: तो दोस्तों आप गीत सुन रहे थे पहली नजर में कैसे जादू कर दिया. जी हाँ, पहली नजर में जब हमें किसी से प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट त्यंग देव खानिया. ओ जब पहली नजर में कैसे जादू कर दिया इन तुन वो इकतना टंखा नहीं दू हालते एम मई नी चौन इन. ओ मौका मिले तो जरूर देखेगा इस फिल्म को. चलिए हम अपने अगले चॉइस की ओर चलते हैं. अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये भी बहुत बहुत ही सुंदर है गीत, और हमको उम्मीद है आपको भी जरूर जरूर पसंद आएगा. चलिए हम और आप नाचते ही इस गीत के साथ. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए तीसु एंगती गंती खा इन याल नते इन मुथियाम लो नते अलो ओम चांग इन अलो ओम चांग पो इन इन था थम लो इन एंगे इन वन रेंग ओ तीला ओ

तो ये थी दोस्तों, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तुम देना साथ मेरा। मतलब उमजी अचू ई हर सतना ले मंग अन्ना अलो थेन पोन एमो इन तीन मुथियाम लोना अलो थेंग अनि पो इन नंगचू ककियांगा ओम रेंग थी नंगचे तीना हनी ओ चानिन तुना हियान एफ पी अकन लाइफ में का मिनिट लेम ते ओम तोआ तुना हिया मिनिट सोम पहनी सोम पथुम वेल अलो ओमा ई एफ एम जो ओ ही जानिना हियानिन ओ एफ पी आ ऑल इंडिया रेडियो आइजोल अखन कन लाइफ में कनी। तो दोस्तों ये थी जब कोई बात बिगड़ जाए। चलिए हम अपने अगले चॉइस की ओर जाएंगे। अब हमारा अगला चॉइस है, कौन तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। कह मंग दानंग एम एम हियन तु इनगे मंग यंग से अब हन रिल तक तिरु हे लाइ जो मोई कति तोप ले थे लो चुदो बाका है सुशांत चन्ना खाला निजुए मो मुनम ही कति तोप ले थे लो नि हे लाइ सु चानिन अ फिल्म पो हे अमुनम तब धोनी ए क्रिकेट स्टार खाकन छियांगा खमी स्टोरी बेस खानिता ए हुन कन लोने नि चानिन लो एन देंगे ए रु मुनम लुतो

तो दोस्तों ये थी कौन तुझे प्यार यू प्यार करेगा जैसे मैं तुझे करती हूँ। ये थी फिल्म एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म का। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला गीत है जो मैं अपना अगला गीत पेश करने जा रही हूँ। ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको भी जरूर जरूर पसंद आएगा। इस ये जो गीत है काइट फिल्म का गीत है और इस फिल्म में है ऋतिक रोशन और बारबरा मोरी। तो हमको उम्मीद है आपको भी ये जरूर जरूर पसंद आएगा। चलिए हमारा अगला गीत जो है जिंदगी दो पल की।

तो दोस्तों आप गीत सुन रहे हैं जिंदगी दो पल की काइट्स फिल्म का गीत है ये। ऋतिक रोशन और बारबरा मोरी है इस फिल्म में और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जरूर पसंद आया होगा ये गीत। हम बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही

अगर दूसरे दिन किसी दिन ओ मैं ये कहना चाहूंगी कि FB में ऑल इंडिया रेडियो आइजोल पेज है, उसे लाइक कीजिए और इसमें आपको जो भी लाइव प्रोग्राम होंगे वो नोटिफाइड किया जाएगा और आप देख सकोगे अपने RGS को। तो आप सुन रहे FM 107.7, आपकी RJ अमोई 23 खान के लिए आपसे अलविदा लेती हैं। हम वापस आएंगे रात के 10 बजे अपने आखिरी खंड में। आप सभी ट्यून में रहिएगा, मिलते हैं आखिरी खंड में।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम जोइसो दशमलव सात पर। आरजे मोइती आपके साथ है इस वक्त अपनी आखिरी खंड में। जी दोस्तों, ये जो खंड है हमारा, इस आखिरी इस ट्रांसमिशन का आखिरी खंड है, और इसके बाद आपकी और हमारी फिर से कब बातें हों ये तो सिर्फ भगवान ही जाने। चलिए दोस्तों, हमारी तरफ अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत बहुत ही कम रह गया है। इस खंड में मैं लाई हूँ तीन फिल्मों के गीत, सलाम नमस्ते, तौबा तौबा और नई पड़ोसन फिल्मों के गीत। तो पहला गीत आप सुन ही रहे हैं, कुर्बान, जो कि सलाम नमस्ते फिल्म का। तो बढ़ते हैं अगले गीत की ओर दोस्तों। अगला गीत जो अभी आपको सुनाने जा रही हूँ, शंकर महादेवन और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में है ये, चोरी नहीं की, और फिल्म का नाम है तौबा तौबा। जाए जो चोरी नहीं की फिल्म है नई पड़ोसन का।

ये थी दोस्तों शंकर महादेवन और लक्ष्मी महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में चोरी नहीं की फिल्म है नई पड़ोसन का। तो बढ़ते अगले गीत की और दोस्तों उससे पहले आपके संदेश की ओर ध्यान देना चाहूंगी। लल दिन पुया की तरफ से है लल दिन पुया ओ आर जी प्ले ले तुर्खा नंग माता ने लो गाय थे जोंग जोंग तान ले कठियांते वेंग संग संग मी तान लल दिन पुया फल कौन वेंग लाई एफ एम गाय संग एम एम टू हियान अरुण तीन इचु जितने भी लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं आप सभी के नाम दिन पुया ने इस गीत को अर्पित किए हैं। तो चलिए दोस्तों अगला गीत अगला संदेश है ये हाई आर जे मैम आपने अपना नाम नहीं लिखा है कृपया करके अपना नाम रखिए ताकि हमें पता चले कि किसकी तरफ से है ये संदेश। दुर्गेश नगनपुरे आपका संदेश मिला है गुड इवनिंग और मैंग मोइते का संदेश है जो हमें लिखते हैं मोइते तान लेतू तान रोनती बोगनी मैंग मोइते ने भी सभी सभी श्रोताओं के नाम डेडिकेट किए हैं अर्पित किए इस अगले गीत को। तो दोस्तों मैं अगला गीत आपको सुनाने जा रही हूं तौबा बहुत ही प्यारा गीत है शान और गायत्री अय्यर की आवाजों में माय दिल गोस सलाम नमस्ते फिल्म का गीत है ये। चलिए आप सभी सभी के नाम जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं

है ना सुंदर दोस्तों, ये गीत सलाम नमस्ते फिल्म का गीत है माय दिल गोज। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले गीत की और उससे पहले के संदेश की ओर फिर से ध्यान देना चाहूंगी। मिनल अहमद का संदेश है जो हमें लिखते हैं, इन्होंने गीत सुनने की चाहत की है, जरूर सुनाएंगे आपको। हमको दीवाना कर गई फिल्म का गीत है और मिनल अहमद डिस्ट्रिक्ट है करीमगंज से ये लिखते हैं। मैं ये गाना सुनना चाहूंगा और सबसे पहले डेडिकेट करना चाहूंगा ब्यूटीफुल आरजे मेरे लिए। शुक्रिया शुक्रिया मेरे पसंदीदा सभी आरजे के लिए डेडिकेट कर रहेगा और मेरे सभी दोस्तों के लिए रहेगा। हमको उम्मीद है अहमद आपके सारे दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं जो कि है हितेंद्र दास, बिको मुद्रा और मुंदा, अविनाश टेली, रोमोना एंड फैमिली मेंबर्स और जख्म। इन्होंने एक शायरी लिखा है, जख्म तो भर जाते हैं वक्त के साथ साथ मगर अश्कों से कभी नसूर भी भरा करते नहीं भरा करते। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे शायर लिखते हो, इसी तरह हमें भेजते रहेगा ठीक है। मुझे भी अच्छा लगता है ये सब पढ़ना। और ये है तेरे हवाले गाना सोना दे दो आरजे मैम, मैं त्रिपुरा से, पूर्णिमा सिन्हा और मेरा सन। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा। अगला गीत जो हम सुनाने जा रहे हैं वो आपके और खास करके आपके बेटे की भी नाम और दुर्गेश और मिनल और उसके सारे साथियों के नाम। तो चलिए दोस्तों हम सुनते हैं ये गीत, ना जी सके यहाँ भुला देंगे तुमको सना। हमको दीवाना कर गई फिल्म का गीत है।

तो ये है 200 गीत जो जिसको सुनने की फरमाइश की अमीन अल अहमद ने। बढ़ते हैं हम अपने अगले गीत की ओर। अगला गीत जो है हमारा दोस्तों, बहुत ही प्यारा गीत सुनाने जा रही हूँ और मुझको उम्मीद है कि आपको भी जरूर पसंद आएगा। और दुर्गेश नगनपुरे ने लिखा है कि लिसनर्स, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, बजाते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताएं हैं इनके साथ दुर्गेश नगनपुरे, वंदना बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। तो आप सभी सभी के नाम करना चाहूंगी इस गीत को। चलिए हम और आप सुनते हैं ये गीत। इमरान हाशमी फिल्म में वो लम्हे वो बातें, जहर फिल्म का गीत है।

तो दोस्तों, गीत आप सुन रहे हैं वो लम्हे वो रातें वो भीगी भीगी यादें। ये है दोस्तों जहर फिल्म का गीत। हमको उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। और चलिए दोस्तों, ये मिनाल अहमद ने हमें शुक्रिया किया है, बहुत बहुत शुक्रिया लिखा है। वेलकम वेलकम कहना चाहूंगी। और हाँ, अगर हमारे पास आप हमारे सिस्टम में आपके आपके फरमाइश के गीत होंगे तो अगले ड्यूटी में भी जरूर प्ले करेंगे आपके लिए, ठीक है। और ये संदेश है हाँ पूनम की तरफ से ना। हाँ, इन्होंने भी एक गीत सुनने की चाहत की है, जरूर जरूर सुनाएंगे। चलिए, हमारे पास वक्त बहुत बहुत ही कम है, इसलिए सुना रही हूँ तेरे हवाले, लाल सिंह चड्ढा का ये।

जी हाँ दोस्तों, जब तक आप गीत सुनते हैं आपके संदेश की ओर मैं ध्यान देना चाहूंगी। ललदिन कुया फल कॉन्विंग लाइन एक और संदेश या है लिखते आरजे पे ले दुखा नंग माता ले लोंगा थवे जोंग जोंग तान ले तक चांते जोंग जोंग तान ले आरजे जोंग जोंग तान दल दिन या न रंतिया ट्रांग तक इन हो अंसे रंतिया बहन लो मुझे तक एम और तिहान इन ट्रांग तक इन हो तू रा कहीं ऐसे कहीं आई तब में ने और दिन पुई नंग पो तुई तक इन लोग बुदों ने और पूनम जी आपका संदेश मिला है बहुत बहुत मैं आपको ठीक है वेलकम कहना चाहूंगी। मुझे धन्यवाद दिया है। हमें उम्मीद है कि पूनम और हमारे आज रात के जो जितने भी श्रोताए हैं आप सभी को अच्छी नींद आए आज रात और हम उम्मीद करते हैं कि आज कल की सुबह आप सबके लिए शुभ हो, खुशी से भरी हो। तो आप सुन रहे हैं FM जो 107.7 और इस वक्त आप वक्त बिता रहे अपनी आरजे मोइती के साथ। हमारे आखिरी इस खंड के आखिरी गीत की ओर हम जाएंगे आपके साथ बातें करते हुए। गीत सुनते हुए वक्त कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला और हमारे जाने का वक्त आ गया है। इस वक्त जाने से पहले एक और गीत आपको जरूर जरूर सुनाऊंगी आप सभी से विदा लेने के लिए। तो हमारा अगला और आखिरी गीत होगा अगर तुम साथ हो तमाशा फिल्म का गीत है। ये आप सभी श्रोताओं के नाम और जितने लोग भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं, कोई अपने सफर में होंगे, गाड़ी में होंगे, कोई अपने बिस्तर में होंगे, तो आप सभी के नाम, अस्पताल में जितने भी हैं और हमारी सुरक्षा के लिए जितने भी लोग ड्यूटी कर रहे हैं, नर्स, डॉक्टर्स, सिक्योरिटीज, पुलिस, आप सभी के नाम। तो जाते जाते ये गीत अगर तुम साथ हो। शुभ रात्रि।